0: ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসই কৈছিল, সংসাৰত বাস কৰিব লাগে বোকাত থকা মাছৰ দৰে, যেনেকৈ মাগুৰ মাছ বোকাত থাকে অথচ গাত অকণো বোকা নালাগে। এয়া আকাশবাণী তেজপুৰ। ক্ষন্তেক পিছতে 6 বজাত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रुक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া আগবঢ়াইছো সমূহীয়া গীতৰ পাঠদান অনুষ্ঠান।
1: নমস্তে বচ্চো, আজ হম শিখেঙ্গে এক দেশভক্তি গীত নেপালী ভাষা মে। শিখোগে না? ये गीत सिखाने के लिए आज हमारे साथ हैं दीदी सीमा झा।
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बच्चों। बच्चों आप सभी कैसे हो, ठीक हो ना?
2: जी हाँ।
3: आप सभी तातंगचिन सेकेंडरी स्कूल गांतुक से आए हो ना?
2: जी मैडम।
3: बहुत अच्छे बच्चों, सबसे पहले आप सभी अपनी अपनी कॉपी और कलम निकाल लें, क्योंकि हम सबसे पहले गाने के बोल लिखेंगे। तैयार है आप सब? बच्चों इस गीत को लिखा है श्री रुद्र पौड़ियाल जी ने, और इस गीत के संगीतकार हैं श्री सुमन कार्की जी। तो बच्चों अब हम गीत के पहले स्थाई को लिखेंगे, तो लिखना आरंभ कीजिए। माथी माथी
2: माथी माथी
3: हिमाल को,
2: हिमाल को
3: सेतो मुकुट लाई,
2: सेतो मुकुट लाई
3: तौला तौला समुद्र ले,
2: तौला तौला समुद्र ले
3: पाँव पखाली,
2: पाँव पखाली।
3: बच्चों आप सभी ने लिख लिया?
2: जी हाँ।
3: अब मैं आप सभी को इसका अर्थ बताती हूँ। इसका अर्थ है हिमालय के ऊपर बर्फ रूपी सफेद मुकुट शोभायमान है, और नीचे पैर पखारता सागर, दोनों ही बहुत सुंदर दिखते हैं। अब हम स्थाई की दूसरी पंक्ति को लिखेंगे। लिखना शुरू कीजिए। सुंदर श्रेष्ठ,
2: सुंदर श्रेष्ठ
3: बनी बसे को,
2: बनी बसे को
3: यो देश,
2: यो देश
3: विश्व भरी,
2: विश्व भरी
3: गर्व बोकी,
2: गर्व बोकी
3: बसने,
2: बसने
3: मेरो देश,
2: मेरो देश।
3: इसका अर्थ है सुंदर और विशाल रूप में बसा हमारा यह भारत देश का सिर विश्व भर में हमेशा ऊंचा रहा है। अब हम पहले अंतरे की पहली पंक्ति को लिखेंगे, तो लिखना आरंभ कीजिए। चाप गुरास,
2: चाप गुरास
3: सुनाखरी,
2: सुनाखरी
3: फुलने पहाड़,
2: फुलने पहाड़
3: अन्न,
2: अन्न
3: फल फूल,
2: फल फूल
3: भरने,
2: भरने
3: सौम्य मधेश,
2: सौम्य मधेश।
3: इस पंक्ति का अर्थ है यहाँ के पहाड़ों पर जहाँ चाप गुड़ा

0: बांस, बुरुंश और ऑर्किड और भी कई फूल हैं जो शोभायमान हैं। वही समतल सौम्य भूमि अन्न फल फूलों से भरी पड़ी है। अब हम पहले अंतरे की दूसरी पंक्ति लिखना आरंभ करेंगे। लिखना शुरू कीजिए। होचो अलगो गोरो कालो सबई हमरे मांचे एकता मा बांधिए को भारतीय मांचे। इसका अर्थ है हमारे यहाँ नाटे लंबे गोरे काले सभी तरह के लोग हैं, मगर फिर भी हम भारतवासी एकता रूपी धागे में बंधे हैं। बच्चों, अब हम दूसरे अंतरे की पहली पंक्ति को लिखेंगे। गंगा बनी हिमालय को बगने नदी नाला भिजाउंदे धरती सबई
1: बंचा
0: उर्वरा। लिख लिया आप सभी ने?
1: जी मैडम।
0: तो बच्चों, इसका अर्थ है हिमालय से सभी नदी नाले गंगा बनकर बहती है और फिर बहने के क्रम में यहाँ की धरती को भिगोकर उर्वरा यानी कि उपजाऊ बनाती है। अब हम दूसरे अंतरे की दूसरी पंक्ति को लिखना आरंभ करेंगे। जातो धर्म आपने खुशी
1: जस्तो माने पनी
0: हामी सबई
1: भारतीय
0: भारत
1: हाम्रो
0: भूमि। इस पंक्ति का अर्थ है यहाँ के लोग अपनी खुशी से अपने जात और धर्म को मानते हैं और हम सब भारतीय हैं और भारत हमारी भूमि है। तो बच्चों, गाने के बोल तो हमने लिख लिए, अब इस गीत को गाना सीखोगे ना बच्चों?
1: जी मैडम।
0: आप सभी को इस गीत को गाकर सिखाने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं श्री सुमन कार्की जी। आप सभी सुमन कार्की सर का अभिवादन कीजिए।
2: नमस्ते सर।
3: नमस्ते बच्चों, आइए सबसे पहले हमारे साथ सा बोलिए। सा

0: बहुत अच्छा।
1: बच्चों आपने एक गीत तो सीख लिया, अब इस गीत को तबले के साथ गाइए। ये गीत कारवा ताल में निबद्ध है, मात्रा है 8। ठेका शुरू कीजिए 1।

0: शाबाश, अब इस गीत को अपने घर जाकर अभ्यास करना। करोगे ना?
1: जी सर।
0: साथियों को भी सिखाना। सिखाओगे ना?
1: जी सर। नमस्ते सर।
2: अजीर खमुया गीतर पाठदान अनुष्ठान एटी नेपाली भाषार गीतर पाठ आगभरवा हल। एया आकाशवाणी गुवाहाटीर महाबाहु তাহানির গীত। আজির অনুষ্ঠানত প্রথমে শুনাব লৈছো রুণুমি ঠাকুর আর ভবেশ ঠাকুরের দ্বৈতকণ্ঠের গীত। গীতর কথা ভবেশ ঠাকুরৰ।

0: বেংকসমূহ গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ্থে আজি খোলা ৰখা হৈছে। বেংক কৰ্মচাৰীসকলে কাইলৈৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আহ্বান জনোৱা ধৰ্মঘটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে বেংকৰ সকলো শাখা কাৰ্যালয় এ টি এম সংলগ্ন শাখা আৰু মুদ্ৰা ভঁৰালসমূহ খোলা ৰখাত অনুমোদন জনাইছে। ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কেইবাটাও বেংকে তিনিদিনীয়া ধৰ্মঘটৰ সময়ত গ্ৰাহকৰ বাবে এ টি এম যোগে শুল্কবিহীন ধন উলিওৱাৰ মাহেকীয়া সীমা বৃদ্ধি কৰিছে। আজি বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস পালন কৰা হৈছে। জনসাধাৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰা, সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ প্ৰসাৰ আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশত পৰ্যটনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতি 27 ছেপ্টেম্বৰত এই দিৱস পালন কৰা হয়। এইবাৰ এই দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে পৰ্যটন খণ্ডক নতুন ৰূপত বিকশাই তোলাৰ বাবে ডিজিটেল কাৰ্যসূচী আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
1: साथ में जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
3: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
2: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ोन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार

0: जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
1: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
5: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,50,00,000 से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे।

0: इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधमसिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
3: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्ट बोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
1: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे

0: कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट. आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ.
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक. कितना ब्लॉक करूँ यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है.
4: तो क्या करूँ?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो. कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट. बस कुछ सेकंड्स का काम.
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है. सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें. ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग.
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ. तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है.
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से. RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें. बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ.
4: आज ही सर्च करूंगा.
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से.
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे. तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात.
12: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है. मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं. मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं. भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं. ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की. 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी. LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी. सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण

पर प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था। और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की यह सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है se.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद

करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है। और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवड़ता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और

देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहां दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया, उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया।

उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉग की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए

अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, विदेश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई हैं। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा यह अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के
तलो मडियाना।

0: की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144 16 पर कॉल करें।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰ 729 কিলোহাৰ্জ আৰু এফ এম বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্জত খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 12 বজাত হিন্দীত আৰু 12:05 মিনিটত আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2.60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने

0: विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन को उन्होंने जो दिशा और ऊर्जा दी, अयोध्या में भव्य मंदिर उसी का निर्माण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया। उन्होंने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। नशा मुक्त युवा अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज ग्राहकों की सुविधा के लिए खुले हैं। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী দুপৰীয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাতত লোকপিয় লোক সকলোৰে বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্ব বুলি অভিহিত, সেৱা সংকল্প অভিযানৰ অংশ হিচাপে ৰাজ্যত অংগন মিলন সেৱা শীৰ্ষক বিশেষ পৰিপুষ্টি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ, ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ আয়োজন আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰবটিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত হৃদযন্ত্ৰৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোকপিয় লোক সকলোৰে বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্ব বুলি অভিহিত কৰিছে। শ্ৰীমোদীয়ে আজি আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে নিজেই লোকপিয়লৰ সবিশেষ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা সুবিধাজনক আৰু জনসাধাৰণে মোবাইলৰ সহায়ত অতি সহজে নিজৰ আৰু পৰিয়ালৰ তথ্য পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে। হিন্দীৰ লগতে 16টা ভাৰতীয় ভাষাত এই সুবিধা উপলব্ধ বুলি শ্ৰীমোদীয়ে মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোকপিয়লৰ অনলাইন পৰ্টেল se.census.gov.inৰ জৰিয়তে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু পৰিয়ালৰ সবিশেষ সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰায় 15-20 মিনিটৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে।
1: জনগণনা হম সবকা ৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্ব হয়। মানে 15 আগষ্ট কো ভি দেশবাসীয়ো সে আগ্ৰহ কিয়া থা কি ইসকে লিয়ে अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পাছতেই অৰ্থাৎ 1 বজাত হিন্দীত আৰু 1:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा सामने है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2.60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
2: 27 सितंबर

0: 26 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं।
0: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi said that India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control LOC to take action against terrorism. Prime Minister Modi said the surgical strike was India's decisive response to the long-standing pain the nation had endured due to terrorist attacks. He stated that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
0: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: On the ongoing census, Mr. Modi said the first phase of this exercise is nearly complete across all states and UTs. Data from over 32 crore families has already been recorded. Mr. Modi emphasized that the census is a national responsibility for all. He added that the facility to self-register census details is very convenient and people can register information about themselves and the families directly from their mobile phones. Along with Hindi, this facility is available in 16 languages. The Prime Minister said the entire process takes about 15 to 20 minutes. Prime Minister Modi noted that India began the year celebrating national pride through the Somnath Swabhiman Parv. He highlighted that despite Mahmud of Ghazni,

0: India's Abhay Singh won silver in the men's single squash. In the final, he lost to Malaysia's Yeo N 11-9, 11-5, 11-5. The world number 26 Indian was unable to match the number 18 Malaysian, who defended his Asian Games title with a commanding straight games victory. In women's single squash, Anahat Singh also bagged silver as she played the final against Malaysian Sivashankari Subramaniam. Earlier, Ankush Fangal assured India of his first boxing medal at the Games after defeating Tajikistan's Nekruz Salimov 5-0 in the men's 80-kilogram quarterfinal today. India is now on the 11th position in the medals tally with a total of 32 medals, including 4 gold, 14 silver and 14 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindhu demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG power train at Sabarmati. Anahat Singh red alert for heavy to very heavy rainfall issued of Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, Anahat Singh bagged a silver. Abhay Singh wins silver in men's single squash. Boxer Ankush Fangal assures medal. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंधु ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति

0: समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथोन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानीत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम

0: आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
3: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मैटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
2: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि

0: उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া শুনক পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

0: समय मौसम परिवर्तनको समय हो। यस बेला स्वात्विक हलुका र सुपाच्य भोजन जस्तै खीर जौ तिल गर्नाले शरीरको पाचन प्रणाली सन्तुलित रहन्छ र मौसमी रोगहरूबाट बाँचिन्छ। सामाजिक संस्कृति र पारिवारिक महत्व। आधुनिक र भागदौड पूर्व जीवनमा स्वर शारदले मानिसलाई आफ्नो र रुटसँग जोडिने काम गर्छ। परिवारका सदस्यहरू एक ठाउँमा भेला भई आफ्ना बितिसकेका आमा बाबु हजुरबा हजुरआमा र पूर्वजहरूको योगदानको चर्चा गरिन्छ, जसले नयाँ पुस्तालाई आफ्ना वंश कुल र परम्परा बारे ज्ञान दिलाउँछ। साथै सोह्र श्राद्ध लगत्तै हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं पनि सुरु हुन्छ। मानिन्छ कि नयाँ वर्ष वा ठूला चाड पर्व मनाउनु अघि आफ्ना पूर्वजहरूको आशीर्वाद लिनु अनिवार्य हुन्छ। सोह्र श्राद्धले मन र घरलाई शुद्ध बनाएर दशैंको धार्मिक जगलाई अझै बलियो र पवित्र बनाउँछ। सोह्र श्राद्धको केवल एउटा परम्परागत कर्मकाण्ड मात्र नभएर संस्कृति, संस्कार, प्रकृति र कृतज्ञताको त्रिवेणी हो। यसले हामीलाई हाम्रा पूर्वजहरूको सम्मान गर्न, समाजका अन्य प्राणीहरूप्रति दयालु हुन र जीवनको अनित्यतालाई बुझेर स्वात्विक एवं सत्मार्गमा हिँड्न प्रेरणा दिन्छ।
1: श्रोताहरूले यति दिनसम्म सोह्र श्राद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक र व्यवहारिक विश्लेषण शीर्षकमा सुन्नुभयो एक वार्ता। यसलाई लेखी पठाउनु भएको थियो सञ्जना नेवार र वाचन गर्नुभयो गङ्गा छेत्रीले। श्रोताबिन, यसका साथै आजको हाम्रो वार्ताको कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ।
2: क्यूरी प्यारी, फिर तूने झाड़ू चलानी शुरू कर दी। तू जब भी देर से आती है फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है।
3: काम तो सब हो गया है बाबूजी।
4: एक बात कहूँ बाबूजी, अब क्या है?
3: रमेश बाबू, आप लोगन के बहुत हैला कान के हैं। अरे आप लोग तो अपन लड़का समझ के पाल पोस के बड़ा के हैं, और वो न जाने कौन जन्म के दुश्मनी निकालें, सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए।
4: तू मेरे घाव क्यों कुरेद रही है, चुप क्यों नहीं रहती?
3: अरे आपन खून होता तो कभी ऐसा करते?
4: अपना ही खून तो नहीं था रे, तेरे तो चार चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है?
3: कोई कमी नहीं, आपन तो अपने होती बहू जी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खराब किया, अरे उतने में तो नीमा बीवी मजे में नहीं पड़ जाती। बेचारी नौकरी करत करत बुढ़ाए रही है।
4: देख, अगर काम पूरा हो गया हो तो जा, बकबक ना कर।
3: मुझे इतना टेम कहां जो गप्पे मारूं, चलती हूँ, राम राम।
4: अपना खून, इस कुमार प्यारी ने सही ही बात तो कही है। मैं नाकामी की राख से अपने को ढकती रही। डॉक्टरों ने कहा मैं मां नहीं बन सकती, और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए नितांत स्वार्थी मैंने ये जुआ खेल डाला। उसकी फोली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा बीबी अभी 35 की ही तो हुई है, शादी हो जाए तो वो मां बन सकती हैं। उनके बच्चे में मेरा ना सही, मेरे पति के कुल का खून तो होगा ही।
5: ललिता, इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो।
6: नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या?
4: नहीं, पर उम्मीद है छुट्टियों में वो खुद आएंगी, और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा, समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं।
6: इसमें तुम्हारा क्या कसूर, भाग्य का खेल ही है और क्या। तुमने बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया।
4: उसी के चक्कर में नीमा बीबी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए।
6: नीमा बीबी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना।
4: मैं उनसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती, उनकी शादी न हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का, और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है।
6: पैसे की बात

0: छोड़ो, कमा धमा रही कुछ ना कुछ तो जोड़ ही रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी न माने तो अभागा।
1: नहीं मानते, अब तो लोग बहू को घास फूस और नोटों को लक्ष्मी मानते हैं।
0: अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो दौड़ भाग कर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो।
1: बैठिए कमला बहन, चाय बनाकर लाती हूँ।
0: अरे बस बस, दरवाजे मत तोड़िए।
2: जरा दरवाजा तो खोलिए। नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: मैं तो न जाने कब से भटक रहा हूँ। चंचल बाबू का घर ही नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा ये है तो चला आया।
0: ये बिहारी बाबू का घर है।
2: अच्छी मुसीबत है, बतलाइए। चंचल बाबू ने अपनी बेटी की शादी का इश्तहार छपाया था तो घर ही नहीं मिल रहा। शगुन साइड ठीक नहीं दिखती।
0: आपको किसकी शादी करनी है?
2: अपनी?
0: हाँ?
2: क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? अभी एक भी बाल नहीं पका है मेरा। देखिए देखिए।
0: ठीक है ठीक है।
2: रोज बादाम का शरबत पीता हूँ।
0: अरे तब तो बैठिए, हमें आपकी ही तलाश थी। अरे ललिता देख जल्दी आ, घर में शगुन घुस आया है।
2: शगुन नहीं, बांकेलाल, बांकेलाल। मेरा नाम बांकेलाल है जी। लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं आज तक कुंवारा कैसे रह गया।
0: अरे वाह, अभी तक आप कुंवारे हैं? तब तो बात बन गई।
2: कैसी बात, मैं समझा नहीं।
0: हमने शादी के लिए विज्ञापन दिया है। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, नौकरी करती है, किसी पर भार नहीं बनेगी।
2: वैसे मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है जी। दवा की दुकान खोली है मैंने, बिल्कुल चकाचक है। अभी घर जाऊंगा तो 1 किलो से माँ के लिए ले जाऊंगा, पाव भर काजू खरीद लूंगा।
0: क्या आपकी माँ बीमार है?
2: नहीं जी, इतना खाने पर भी बीमारी क्या पाप फटक सकती है? हम लोग फल और मेवा ही खाते। जरा मेरा चेहरा देखिए, देखिए देखिए, आईने की तरह दमक रहा है ना?
0: हाँ सो तो है। बैठिए ना, नाश्ता तो करेंगे ना?
2: जी नहीं जी नहीं, मैं अपनी खीर खुद लेकर चलता हूँ। ये लीजिए, जरा खाकर बताइए कितना मेवा है इसमें। लीजिए तो।
0: अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। खाते पीते घर के हैं बाके बाबू।
2: बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। अरे जो सुख खाने पीने में है वो और किसी चीज में है क्या भला? पर माँ कहती है शादी कर ले।
1: अच्छा ये बताइए, शादी में हमें खर्च वर्च क्या करना पड़ेगा?
2: अरे कुछ नहीं, पीली धोती पहना कर लड़की को विदा कर दीजिए, सोने से तो मैला दूंगा। हाँ बारात के खातिरदारी जरा अच्छी हो जाए बस। बात ये है कि मेरे सभी दोस्त मुर्गा तोड़ हैं।
0: अरे, अरे उसकी चिंता न करिए, उतना तो हो ही जाएगा, हम तैयार हैं। लड़की वगैरह दिखाने के लिए कब मिले आपकी माँ से?
2: अरे कोई जरूरत नहीं, शादी तो मुझे करनी है, नौकरी करती लड़की भी क्या देखने की चीज है।
0: ललिता एक फोटो तो दे दो।
2: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी तरफ से बात पक्की, लीजिए खीर खाइए इस खुशी में।
1: तो हमारी तरफ से भी बात पक्की, लीजिए आप भी हलवा खाइए, खीर से ज्यादा गर्म है।
3: समय के गर्म पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक भावुक नहीं रहा जा सकता।
0: इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा है समय का सही उपयोग करना चाहिए।
3: कैसा समय, मैं कुछ समझी नहीं।
0: कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया?
3: मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं।
0: यही सही समय है।
3: कैसा समय?
0: उम्र के दौर का समय। इस आखिरी दौर के बाद शायद आपका खून ही बदल जाए।
3: 2 साल पहले मुझे मियादी बुखार हुआ था, तब खून टेस्ट कराया था, शायद बी ग्रुप है।
0: ज्यादातर स्त्रियों के खून का यही ग्रुप होता है, पर उसके शरीर में सृजन करने वाला खून भी होता।

0: लगता है। सच सच बताइए, जब कभी ये खून आपके अंदर दौड़ता है, आपको बेचैनी नहीं होती?
1: कभी होती थी पर अब नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी किसी ने पसंद नहीं किया।
0: कोई पसंद करे या ना करे, प्रकृति तो अपने ढंग से कार्य करेगी ही, कौन तो दौड़ेगा ही। ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपने किसी को पसंद किया हो।
2: प्यारी चाय दे जा।
0: आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपको किस तरह के पुरुष पसंद हैं?
1: देखिए, इस तरह की बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती है।
0: आखिर क्यों?
1: इसीलिए कि मुझे पुरुषों से घृणा है। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए आज तक मुझे किसी पुरुष ने पसंद नहीं किया। कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है। आपको पता नहीं, मेरी रीढ़ में दर्द रहने लगा है।
2: अरे शादी हो जाए, सब ठीक हो जाए।
1: प्यारी तू चुप रह। कमला जी, इसीलिए तो मैं कभी यहाँ आती नहीं। जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं?
0: अच्छा लीजिए, चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं।
1: बच्चे के लिए खून चाहिए, मैं एनिमिक हूँ।
0: ये तो आम बात है, कौन स्त्री आज एनिमिक नहीं है? इसके लिए क्या लड़कियां शादी नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते? आपके लिए अब भी समय है।
1: मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कैसे बताऊँ आपको? इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूँ।
0: शादी तो आपकी माँ की भी हुई थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी।
1: शायद अब वो समय नहीं है।
0: सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की वो मांग है।
1: मेरा दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल ढकेलते ढकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए केवल 15,000 रुपए थे।
0: इतने रुपए थे, भाई अभी हाथ लगा देते तो शादी हो जाती। आखिर तुमसे उनका खून का रिश्ता था।
1: खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं।
0: और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया?
1: माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई। बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
0: देखिए, अगर औरत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से निकाल दें। मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा, सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है।
1: मगर कौन समझता है इस बात को? तीन जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया।
2: बीवी जी, बुरा तो लगता ही है, क्या कहा जाए ऐसे लोगन को।
0: मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया उजाड़ हो जाएगी।
1: जाने अनजाने लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं, सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
0: देखो, इस तरह मन छोटा ना करो, लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौत के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौत के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौत के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारी सांसों में है।
1: पूरी जिंदगी जीने के लिए स्वीकार हूं फूलों की हथकड़ी। हाँ, मुझे पंखुड़ियों में मिलती है नवजात शिशु की गंध। हाँ, क्यों नहीं, मैं पहनूंगी फूलों की हथकड़ी। मेरी सुंदरता मेरे खून में है, चेहरे में नहीं। मेरे पास अभी भी समय है, मैं शादी कर सकती हूँ। नथ पहनने के लिए मेरी बदनाक छिदवा दो, मैं शादी कर सकती हूँ।
0: बहुत बहुत खुशी हुई कि आप समय से चेत गई।
1: जी, मैंने कुछ कहा क्या?

0: आपने समय को पहचाना है, खून की मांग को स्वीकारा है।
1: बीवी जी, हाँ? इसी बात पर ले आओ गर्मा गर्म चाय।
0: अरे चाय ही नहीं, मिठाई अभी जा।

0: मेरी जिससे शादी हुई है उसे मैं जानती, अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। मांग में सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया था। अब किसी के लिए प्रेम प्रेम नहीं है, है तो सिर्फ अपनी बेचारगी जो चेहरों पर छद्म प्यार बनकर उभरती है। चुप रहो, ये मेरी सुहाग रात है, सुहाग की प्रथम रात्रि। देखती नहीं मेरे चारों ओर पुष्प ही पुष्प कर रहे हैं। हाँ इस समय तो तू कथा परी है, सात समुद्र पार करके यहाँ आई है, अभी तारों को पाने के लिए तू ऊपर उड़ेगी। मगर आज तो आसमान में तारे मटमैले नजर आ रहे हैं। क्या हुआ, सुन रही है वहां शोर? कैसा शोर है ये? शराब के नशे में चूर यही है तेरा पति, तेरे सपनों का राजकुमार। यही है मेरे सपनों का राजकुमार, घर में आई नववधू का भी उसका ख्याल नहीं। वो ये सोचकर निश्चिंत है कि अब तो एक बुलबुल पिंजड़े में कैद ही कर ली है, जो दाना पानी अपने साथ ले आई है। ऐसी बातें मत करो, अब तो मेरे जीवन की डोर से बन चुकी है। यही तो नारी जीवन की त्रासदी है, अजीब रिवाज रस्में हैं। पति कैसा भी हो, इस डोर में बनने के बाद उसे जीवन भर ढोना ही पड़ेगा। तुझे इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी चादर से ढककर विदा किया गया है, जानती है क्यों? क्यों नहीं, ताकि दुल्हन को किसी की नजर न लगे। ना ना ना ना ना, ऐसा नहीं है, ताकि वह वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित ना कर सके। कौन हो तुम, क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है। हाँ हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा, सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी? मैं अभी से क्या बता दूं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी ये कह सकती हूँ। अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो? ऐसा मत कहो, मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया। मगर तुम सरलता से उस पर प्यार मत उड़ेलने लगना, रहस्यमयी बन जाना। इस उम्र में भी नटखट लड़की की तरह चतुर। देख तेरा दूल्हा इधर ही आ रहा है, मैं चलती हूँ।
1: चली गई,
2: कौन जो आ गया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ पास आओ, ये सिर क्यों ढक रखता है?
0: नहीं मैं सिर नहीं खोलूंगी, मैं सुंदर नहीं हूँ।
2: कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो?
0: सभी कहते हैं, पर ये जरूर है कि मेरा खून सुंदर है।
2: खून? अरे खून तो सभी का एक जैसा होता है, सुंदर चेहरा होना चाहिए।
0: वो ठीक कह रहे थे, इसी समय मुझे नटखट लड़की हो जाना चाहिए, रहस्यमयी। नहीं मुझे शराब की गंध अच्छी नहीं लगती।
2: नहीं होगी तो मैं ही आ जाता
0: हूँ। ना ना मैं बीच में ये तकिया रखे देती हूँ।
2: ऐसा क्यों करती हो?
0: ताकि आप अपनी सीमा जान लें और मैं अपनी
2: सीमा। अच्छा अब क्या करूँ?
0: आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो?
2: रानी तुम क्या कर रही हो?
0: गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही हूँ।
2: वो बच्चे अब क्या कर रही हो?
0: अब वेणी में फूल गूंद रही हूँ।
2: फूल कहाँ से मिला तुम्हें? मैं तो खाली हाथ आया।
0: ये फूल बसंत ने दिया।

0: देखो, फूल बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ।
1: रति की तरह सुंदर तुमने तो अभी तक अपना घूंघट भी नहीं खोला।
0: क्षण क्षण मेरी सुंदरता बढ़ रही है, मैं रति हो गई हूँ।
1: रति की तरह सुंदर, रति की तरह सुंदर मैं तो
0: मगर दूर रहिए, सीमा मत पार कीजिए।
1: अरे सीमा की कोई बात नहीं ना, मैं हर किस रुक नहीं सकता।
0: जो करना है कर लूं, अपने खून के लिए, मातृत्व के लिए, जीवन की गति के लिए। हो सकता है ऐसा स्वाभाविक सच फिर नहीं बोले जिंदगी।
1: तुम क्या सोचने लगे हैं? देखो अब मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता।
0: चिड़िया उड़ने से पहले आसमान से नहीं पूछती कि मैं तुम्हारे आंगन में उड़ूं या ना उड़ूं।
1: अरे वाह, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, तब तो तुम बहुत ही सुंदर हो गए। सचमुच तुम तो बहुत सुंदर हो।

0: अच्छा, तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है?
1: मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां बढ़ाकर और आराम करूं।
0: मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं ही नहीं।
1: नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिली जाएंगी, वही ले लूंगी। क्या आप मेरे खाने पीने का भार भी नहीं उठा सकते?
0: क्यों नहीं, मगर जब तुम कमाती हो तो फिर चिंता की क्या बात। देखो, मेरी दवा की दुकान टूट गई है, इसलिए छुट्टियां लेने पर खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूँ वहाँ।
1: आप वहाँ क्या करेंगे?
0: अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें हर्ज ही क्या है?
1: इनको मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा, मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली।
2: सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो, रखवाओ ये सामान वगैरह।
1: भाभी ये सब क्या है?
2: फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट यही सब, आज गोद भराई होनी है ना, मगर यहाँ तो कोई इंतजामी दिखाई नहीं पड़ता।
1: भाभी मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दूं।
2: टालने की क्या जरूरत?
0: अरे भाभी के रहते तुम क्यों परेशान हो? अरे उत्सव का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता करो।
2: उत्सव का ही नहीं, मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है?
0: कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है।
2: अरे मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा।
0: हाँ हाँ और क्या, भाभी बच्चा आपका ही है।
1: ये कौन होते हैं मेरे बच्चे को किसी को देने वाले?
2: बांकी बाबू आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट पसंद आया, और ये साड़ी। अरे नीमा बीबी कहाँ गई?
3: आंगन में गई है, लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ है।
2: अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है। नीमा बीबी, नीमा बीबी,
1: मेरे पति को मैं नहीं मेरी कमाई चाहिए, भाभी को मैं नहीं मेरा बच्चा चाहिए। मैं कित्तों के बीच फंसी एक छोटी सी लाचार चिड़िया हूं, अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा यहां, किससे कहूं? मगर मेरे पेट में जो बल रहा है,

0: वही तो मेरा खून है, वही मेरा होगा। मैं अपने खून पर किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
1: अरे नीमा बीबी, तू बदहवास पड़ी हैं। बीबी जी, आप इतनी कमजोर हैं, बताया भी नहीं, डॉक्टर को दिखा देती।
0: आप बैठिए, मैं डॉक्टर के यहाँ हो ही आती हूँ।
1: चलो मैं भी चलती हूँ ना।
0: नहीं नहीं भाभी, आप चिंता ना करिए, उत्सव की तैयारी कीजिए, पड़ोसियों को बुलाकर गाना बजाना कराइए, लड्डू बटवाइए, बंधनवार सजवाइए। मैं डॉक्टर के यहाँ गई और आई।
2: मैं चलूं तुम्हारे साथ?
0: क्यों परेशान होंगे आप भी, मैं होकर आती हूँ ना अभी। तब तक आप भाभी के साथ जश्न का प्रबंध करें, डॉक्टर के पास सिर्फ मुझे जाना भर है।

0: डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? कथा परी लगता है आसमान के तारे नहीं तोड़ सकी। हाँ, नहीं तोड़ सकी। डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई? कोई जरूरत नहीं समझी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है, फिर गलत क्या है? क्यों बतलाऊं, तुम हो कौन? नहीं पहचाना? मैं तो सुहाग रात के दिन भी तुम्हारे साथ थी, थी, मगर सामने तो नहीं आई। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज ही क्यों सुनाई पड़ती है? अब भी नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारा ही प्रतिरूप हूं। फिर तुम ही बोलो, मैं क्या करूं? वहां तो लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। जश्न? तुम्हारा बच्चा छीनने का जश्न? तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहती ना?
1: नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।
0: तब अपने पैक से कागज निकालो और लिखो।
1: क्या लिखना होगा? किसे लिखना होगा?
0: उन्हें ही, जिन्हें तुम छोड़ आई हो। लिखो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर का कहना है मेरे पेट में कोई जीव नहीं, ट्यूमर पनप रहा है। इसका खर्च कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूं।
2: झूठ क्यों लिखवा रही हो? ये सवाल मत करो। बचने का यही, सिर्फ यही एक रास्ता है। इस संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता। जाओ, जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ। इस पत्र का क्या होगा? वो सामने लेटर बॉक्स में डाल दो।
1: फिर क्या होगा?
0: कितनों के बीच फंसी मासूम चिड़िया की मुक्ति।
1: मुक्ति?
0: हाँ, मुक्ति श्वास के लिए, मुक्ति आकाश के लिए, अपने ही खून से सिंचित पोषित उस परिंदे के लिए जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है।
3: मुक्ति एक चिड़िया की, यह नाटक अभी आपने सुना। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। यह हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
5: एक विलक्षण गायक।
6: अरे ओरे
5: संगीत।

0: साधक।
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का।

0: है नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह।

0: शान बेमिस संगीत की
1: पूजा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। उत्तम जी बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
2: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं।
0: मदन जी के साथ बहुत सारी यादें आपकी हैं संगीत बनाने की और रिकॉर्डिंग्स की, तो कुछ सुनहरी यादें हमारे साथ शेयर।
2: रिकॉर्डिंग की उनकी मुझे एक आज भी याद है, मैं पहुंचा रिकॉर्डिंग में और देख रहा हूं कि एक आवाज आ रही है सिंगर की,
0: अच्छा
2: कोई गा रहा है और वो भी क्लासिकल फील है पूरी, तो हमारी हिम्मत नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा चुपके देखा तो मदन जी गा रहे हैं बाजा पकड़ के,
0: खुद ही गा रहे हैं। गाना कौन सा था?
2: गाना नहीं, ऐसी आलाप गा रहे थे, क्लासिकल गा रहे थे
0: जी, जी।
2: और उनकी रिकॉर्डिंग थी, तो कुछ एक डेढ़ घंटे का बाद पता चला कि खंडाला में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी में आए थे, गाड़ी में आए थे और आके जल्दी पहुंच गए और अपने खून वून आया हुआ उनको, उसमें अपने आप को ठीक करने के लिए वो संगीत का सहारा लिया।
0: ये घटना मुझे पता है, मदन जी के जब बेटे समीर कोहली जी आए थे विविध भारती, उन्होंने सुनाया था कि वो ट्रक से वापस लौट रहे थे क्योंकि गाड़ी जो है वो तबाह हो गई
2: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको बाद में पता चली
0: जी,
2: बट वो जो गायकी थी वो क्या फील था उसमें, हा हा हा।
0: तो वो जो पूरा वो एक्सीडेंट की बदहवासी और वो
2: सारी उन्होंने वहां निकाली,
0: गजब की बात है ये तो।
2: सारी संगीत के दौरान उन्होंने गाया बजाया, तो उससे क्या होगा कि सारा जितना भी बैकलैश था ना वो सारा खत्म हो गया। नाउ ही इनटू म्यूजिक,
0: गजब की बात है ये।
2: देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रेमेडी है।
0: हाँ,
2: आज डॉक्टर्स इंजीनियर सब म्यूजिक सीख रहे हैं ताकि हमको ईज मिले, हमको सुकून मिले, हमको स्ट्रेस फ्री हो।
0: हाँ,
2: ये कितना बड़ा एक एजुकेशन है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी से ट्रक में बैठ के आया और स्टूडियो में आया और उन्होंने आते ही उन्होंने बाजा पकड़ा एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। मुझे लगता है शायद एक डेढ़ घंटा गा रहे थे वो।
0: बाप रे,
2: जब हम पहुंचे तो आवाज चल रही थी, गा रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग की,
0: वाह।
2: कौन सा गाना मुझे याद नहीं।

0: मदन जी की यादें और भी शेयर की जाएं और मदन जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए, म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें।
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी।
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था, मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब के।
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भादों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी।
0: अच्छा।
1: अपनी फिल्म का।
0: हाँ।
1: तो मुझे बोलते उत्तम यहाँ मदन जी का चलते हैं, वहां चल के बैठेंगे। तो मदन जी का पियानो था वो। दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा, पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था
0: तब
1: उनका लिखता था। तब हम लोग ऐसे 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा। बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं। हाँ, एंड की जो याद है, लास्ट की, उनका गाना चल रहा था मौसम का गाना, दिल ढूंढता है
0: जी,
1: दिल ढूंढता है गाना।

0: रजिस्टर किया ज्ञान वर्मा ने। ज्ञान वर्मा को कोई और रिकॉर्डिंग दी तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले।
1: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
0: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था।
1: अच्छा।
0: तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था तो सामने मदन साहब बैठे हुए थे, मदन साहब, कौशिक साहब सब बैठे थे, भूपी जी गा रहे थे। तो मुझे इतना याद है कि वो गाना खत्म होते होते तक उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
1: पैनल की टेबल।
0: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, ही वाज सो ड्रंक कह तो, या आई डोंट नो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही वाज। वो पूरे ऐसे बैठ गए। बाद में गाना हम लोगों ने पास किया।
1: अच्छा।
0: भूपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना, ये टेक ओके है, ही डजंट वांट एनीथिंग, इट वाज सो पैथेटिक।
1: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,
0: लेकिन
1: इन तमाम चीजों
0: क्या
1: का
0: गाना
1: दौर।
0: देखे, दिल ढूंढता है
1: जी।
0: तो जी देखिए वो गाना दिल ढूंढता है फिर फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है। अब ये सैड है
1: जी।

0: वही पोएट्री है, उसको एक सैड और एक, और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में।
1: जी, एक
0: मुझे
1: ही गाने
0: हमको
1: की।
0: याद है कि अरे यार मदन जी का क्या गाना आया, सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है,
1: जी,
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा गाने, बहुत अच्छा म्यूजिक
1: इसमें
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: एक मेटल फ्लूट सुनाई देती है।
0: हाँ, वो की फ्लूट है, वो
1: जी,
0: उसकी मुरली जी ने बजाया है,
1: वाह
0: जो
1: वाह
0: सेक्सोफोन
1: वाह,
0: के, बहुत
1: क्या बात है।
0: मुरली सिंह करके,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: पंचम जी के असिस्टेंट भी थे,
1: बिल्कुल।
0: और हमने साथ में बहुत काम किया उनका।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था और उनसे बहुत
0: हाँ
1: लंबी बातें रिकॉर्ड की
0: हाँ
1: थी।
0: वो मतलब ऐसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बजी नहीं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल,
0: उनसे शुरू हुई, उन पे खत्म हो गई,
1: क्या बात
0: ऐसा
1: है
0: हुआ।
1: जी।

0: मदन जी की कुछ और यादें हैं।
1: मदन साहब की एक बात मुझे आज भी याद है। रोशन जी गुजरे थे
0: जी, अचानक उनका निधन हो गया था।
1: अचानक निधन हो गया, हंसते हंसते।
0: एक पार्टी में थे वो,
1: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, उनकी बॉडी को ले जाना था यश। तो मदन जी लेफ्ट उनकी बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे
0: जी जी
1: मदन जी, और हम लोग यहाँ, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
0: इंडस्ट्री के लोग,
1: इंडस्ट्री के
0: म्यूजिक
1: लोग
0: वाले।
1: खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक ही खड़ा। तो मदन साहब यहाँ लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को,
0: अरे बाप रे,
1: लिटरली गाली, मैं यानी गाली नहीं बता सकता,
0: जी
1: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़ के चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
0: अरे बाप रे, अरे गजब,
1: आप सोचिए क्या भाव है,
0: क्या भाव है कि अब मैं जवाब किसको
1: डेड बॉडी
0: दूंगा।
1: पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि सारे तू चले गया, तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा अभी,
0: किसके लिए म्यूजिक
1: किसके लिए
0: बनाऊंगा।
1: म्यूजिक बनाऊंगा।
0: अद्भुत बात है
1: ये मुझे आज भी याद है।

0: और कुछ 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारा एक सोनिक अच्छा गाना लिख दिया, तो मजरू साहब भी फोन कर रहे हैं, आनंद बख्श भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है। तो आज अगर आप अच्छा कुछ करते हो तो उसको खत्म कैसे किया जाए ये सोचा जाता है।
1: जी
0: ये दौर में फर्क हो गया।
1: जी जी
0: वो दौर था प्यार का, अब दौर है दुश्मनी का।
1: जी जी जी
0: कि दुश्मनी कैसे की जाए।
1: आपने मदन जी का जिक्र किया और उसके बाद रोशन साहब का जिक्र आया, उनसे भी आपका एक नाता रहा है, उनसे जुड़ी यादें शेयर कीजिए।
0: बड़ी खूबसूरत, हम लोग पहली रिकॉर्डिंग बजाने गए, कुछ 7-8 बच्चे लोग थे।
1: अच्छा।
0: उन्होंने बुला लिया उनको, और मुझे याद है कि श्याम राव जी और भूपी जी और केरसी जी,
1: ये म्यूजिशियंस थे,
0: ये उनके अरेंजर थे।
1: अच्छा,
0: ये उनके सलाहकार।

0: केसी और श्यामराव, वो भी जो दोस्त थे उनके। तो हम लोग पहुंचे, पूरा रेसल वेसल हो गया 10:15 बजे।
1: जी
0: छोटा सा आदमी आता है 4.5 फुट का, रोशन जी आ गए।
1: हाँ, वो छोटे कद
0: मैंने
1: के थे
0: पहली दफा देखा उनको।
1: जी।
0: तो आते किसी से कुछ कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आए अंदर, ऐसे जैसे वो मैडम बैठी हैं ऐसे अंदर चले गए।
1: जी
0: अंदर से माइक्रोफोन ऑन करके बोलते, हाँ म्यूजिक सुनाओ। अभी म्यूजिक सुनाओ, अभी जब तक केसी जी 1-2 नहीं बोलेंगे हम तो बजा ही नहीं सकते, हम सब बैठे हुए हैं। आवाज आ रही है कि म्यूजिक सुनाओ। तो केसी चुप, श्यामराव भी चुप, पोपी भी चुप, हम सब चुप बैठे। कम से कम 60, 70, 80 म्यूजिशियन तो होंगे। फिर अंदर से, अरे म्यूजिक क्यों नहीं बजाते, म्यूजिक सुनाओ। केसी, श्यामराव, म्यूजिक सुनाओ। फिर चुप।
1: अरे
0: अब ये मैम सोच रही है, नए बच्चे हैं कि ये क्या हो रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है म्यूजिक सुनाओ, ये हम सब चुप बैठे, वो म्यूजिक रेडी है। फिर केसी बोलते, ऐसे थोड़ी ना सुनाएंगे।
1: नहीं।
0: हाँ तो फिर कैसे सुनाओगे, पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही। अभी प्यार कौन सा, अंदर से माँ बहन की कहे शुरू हो गई। अरे हम तो हैरान हो गए। मैं कहे, यार ये कौन सा प्यार है यार। वहां की वहां गाली, म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, अब सुनाओ के सुनाओ। अब सब थालियां, अब सुनाएंगे म्यूजिक। और उसके बाद म्यूजिक शुरू
1: ये
0: हुआ,
1: प्यार था, ये
0: म्यूजिक
1: स्टाइल
0: शुरू
1: थी।
0: हुआ। आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई, रिहर्सल किया 2 2.5 घंटे 3 घंटे में गाना खत्म।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये पहली याद थी उनके साथ।
1: क्या बात है।
0: ऐसा एटमोसफियर, आप सोचो कि वो म्यूजिशियन कह रहा है पहले हमको गालियां दो
1: तब
0: तब
1: बजाएंगे,
0: हम बजाएंगे।
1: गजब गजब
0: तो ये एटमोसफियर था
1: जी।
0: मिशन।
1: उनके साथ आपने कुछ गाने बजाए?
0: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए,
1: अच्छा,
0: याद नहीं।
1: SD बर्मन,
0: अरे बर्मन दादा तो, अरे बाप रे,
1: उनकी यादें माटी है
0: बर्मन साहब के यहाँ तो बजा ही रहे थे क्योंकि सेम ग्रुप था
1: जी।
0: पंचम जी का। इतना मुझे याद है कि महबूब में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी,
1: हाँ
0: शायद गाइड होगी।
1: ओके।
0: तो हम लोग बजा रहे थे, रिहर्सल होगी, रिहर्सल होगी। तो बर्मन साहब ने कुछ मुरारी जी को पीस बताया, बीच में खड़े होके, महबूब स्टूडियो की बात है, पीस बताया उन्होंने। तो उन्होंने वो पीस बताया और मैंने वो यहां से वो पीस बजा दिया।
1: अरे गजब,
0: तो ऐसे मुड़ के देखा, मुरारी को पूछते बंगाली में, कौन बजाया। बोले वो लड़का है, फिर से बोलो बजाने के लिए। तो मैंने फिर से बजा दिया। तो मनोरी को बोलते सबको बोलो ऐसा बजाने के लिए
1: अरे बाप रे, गजब।
0: जैसा उत्तम बजा रहा है ऐसा। यूनुस जी, मैं बैठा था सेकंड या थर्ड रो में। सेकंड डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी।
1: ओ
0: दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया,
1: वाह
0: मैं थर्ड रो से फर्स्ट रो में आ गया।
1: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे
0: एक
1: वो, और
0: महान
1: अपनी धुन के
0: संगीतकार,
1: पक्के।
0: बहुत जबरदस्त।
1: कुछ और घटना याद आती
0: और
1: है
0: एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मुरारी ने छोड़ दिया था,
1: जी?
0: तो यहां एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आमतौर पे कोई नहीं करता, बट मेरे से होती चली गई।
1: अच्छा
0: क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट
1: जी,
0: मेरे से ये चीज होती चली गई जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा। जो ये मेरे से होती चली गई, मैंने नहीं किया, होती
1: जी
0: चली गई।
1: जी
0: बर्मन साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अरेंजमेंट के लिए,
1: अच्छा
0: हाँ कि मेरे साथ काम करो। तो मैं गया, बैठा, उत्तम बासु मुरो तो छोड़ के चले गया। मैंने कहा हाँ दादा, वो तो पता चला, वो तो वहां बैठे हैं मद्रास में, तो हमको गान करना है इसका, गोल्डी का, बहुत इमीडिएटली गान करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। क्या क्या सोच रहे हो? मैं कहा दादा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमको ना बोलता है? मैं कहा दादा आपको ना नहीं बोल रहा। फिर मैं, दादा मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी मैं कभी नहीं लेता। मैंने कहा आपके साथ बहुत बजाया, बासु मुरारी काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो। मैं कहा दादा मैं नहीं कर पाऊंगा। यूनुस कैन यू बिलीव इट, वो आदमी उठा,
1: हाँ
0: दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा।
1: जी
0: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें,
1: जी जी
0: खूब भालो, खूब भालो,
1: खूब बालो,
0: खूब भालो। मैं चला गया।
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली लेकिन
0: मैंने किसी अरेंजर की जगह नहीं ली।
1: जी
0: मेरे को सबका ऑफर आया,
1: जी
0: कलन जी का ऑफर आया, पप्पी लेदी का ऑफर आया, अनु मेलक मेरे पीछे, शंकर किशन का ऑफर आया, आर डी बर्मन का, बाद में जब वासुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने कहा, मदन जी का ऑफर आया मुझे।
1: जी

0: मैंने कभी नहीं लिया।
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी दूसरे
0: मैं उनके
1: म्यूजिशियन
0: अंडर
1: का
0: में, उनके अंडर में काम कर चुका हूं, मैं अभी कैसे जाऊं उनके,
1: जी
0: एज ए म्यूजिशियन चले जाऊंगा, म्यूजिशियन ठीक है, बट एज ए अरेंजर में नहीं लिया। मैंने आज तक किसी की जगह नहीं ली,
1: क्या बात है।
0: कभी नहीं।
1: लेकिन एज ए म्यूजिशियन आप बजाते रहे
0: एज ए
1: बाद में
0: म्यूजिशियन बजाता,
1: दादा के लिए भी बजाते
0: हाँ
1: रहे।
0: हाँ दादा के लिए। लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था,
1: जी
0: फिर वो अनिल अरुण आ गए थे, तो
1: हाँ हाँ
0: फिर वो ग्रुप पूरा फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सके, उनके
1: जी
0: हैंड में तो बिल्कुल नहीं बजा सके।

0: उत्तम जी देखिए, नौशाद साहब की, मदन मोहन की हमने बातें की, हमने रोशन साहब की बातें की, एस डी बर्मन की बातें की, और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनकी बातें करनी जरूरी हैं?
1: देखिए जी, मैंने तो सब क्या बजाया है, कोई ऐसा संगीतकार नहीं था 1962 के बाद
0: जी,
1: चाहे वो श्री रामचंद्र साहब हो, चित्रगुप्त जी हो।
0: चित्रगुप्त जी क्या अभी बजाया?
1: बहुत।
0: और अन्ना क्या अभी बजाया?
1: अन्ना क्या बजाया? अन्ना क्या तो एक किस्सा है, बहुत संगीतमय किस्सा है वो।
0: बताइए।
1: वो किस्सा जरूरी है आज के लोगों के लिए, वो किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक तो क्या है, अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर 70-80 म्यूजिशियन बैठा हुआ है और अन्ना की एंट्री हो गई तो सब साइलेंट हो गए।
0: अच्छा।
1: फिर आप अगर एक सुई भी फेंकोगे तो उसकी भी आवाज आएगी, इतना डिसिप्लिन था। और अन्ना का क्या था कि अन्ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उसके मुलाजिम हैं, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उनके म्यूजिशियन हैं, रिकॉर्डिंग के बाद वो हमारे दोस्त हैं।
0: वाह वाह वाह, पूरा मूड बदल जाएगा।
1: ये उनका फर्क था। और रिकॉर्डिंग के बाद ये वही अन्ना है, आप कोई सोच भी नहीं सकते
0: जी।
1: तो हम लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे
0: जी,
1: और अच्छा गाना, मुझे गाना याद नहीं है, अच्छा गाना था, रिहर्सल विहर्सल किया, गाना रिहर्सल हो गई, रफी साहब आए, रफी साहब ने रिहर्सल किया, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो अंदर से शर्मा जी की आवाज आई, अन्ना की आवाज आई, जॉनी चलो टेक शुरू करते हैं, जॉनी गोम्स उनके असिस्टेंट थे, ओके सर, 1-2 दिया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, फुकड़ा गया, म्यूजिक बन गया, अंतरा शुरू और अंतरा चल रहा है, अंतर के बाद जहां क्रॉस आया
0: जी,
1: क्रॉस शुरू और अंदर से कट हुआ,
0: अरे रे,
1: आवाज आई कट कट, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों कट हुआ, एक टेक कट हो गई, सेम जगह में दूसरी टेक कट हुई,
0: क्रॉस पे
1: कट हुई तो अंदर से आवाज आई। अच्छा उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जब अंदर से बोलते थे तो म्यूजिशियन भी सुना करते थे और सिंगर भी सुना करते थे।
0: जी जी,
1: क्योंकि सिस्टम ऐसा था, अभी हम सब शांत 70-80 म्यूजिशियन शांत बैठा हुआ है, हुआ क्या है, अभी अन्ना बोल रहे हैं, रफी साहब आप मोहम्मद रफी हो, आप सबके मोहम्मद रफी हो, आपको कौन नहीं जानता, आपको कौन नहीं सुनता, लेकिन क्या है, ये गाना श्री रामचंद्र का है, अगर आप श्री रामचंद्र को नहीं गाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये श्री रामचंद्र का गाना है। चुप रफी साहब, आप जो क्रॉस गा रहे हो ना, ये शंकर जयकिशन की जगह है, मेरी जगह ये है।
0: गजब,
1: उन्होंने अपनी जगह गा के सुनाई, मेरी जगह ये है, ये श्री रामचंद्र की जगह है, वो शंकर जयकिशन की जगह है, और आपको श्री रामचंद्र की जगह गाना है। रफी साहब सॉरी सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
0: फिर से शुरू हुआ,
1: डे खत्म हो गया।
0: वाह, इसलिए ये बार बार अड़चन आ रही थी।
1: ओके हो गया, एक छोटी सी जगह थी, बोले वो शंकर जयकिशन की जगह है, ये मेरी जगह है।
0: गाना याद है?
1: नहीं गाना वही तो प्रॉब्लम ये है ना, उस टाइम इतना काम करते थे, सुबह अलग दोपहर को अलग, जैसे अभी यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, कहाँ याद रहेगा क्या क्या बोला।
0: जी जी जी,
1: ऐसी हमारी हालत थी
0: जी।
1: सुबह मदन साहब का बजा रहे हैं, दोपहर को श्री रामचंद्र का बजा रहे हैं, रात को जिंगल कर रहे हैं, सुबह 7 बजे फिर जिंगल कर रहे हैं, फिर शंकर जयकिशन का बजा रहे हैं, तो ये हालत
0: लगातार भागदौड़ होती थी।
1: लगातार भाग,
0: उत्तम जी बहुत भागदौड़ चल रही थी, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजा रहे थे, फेलो म्यूजिशियंस के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जैसे केरसी दादा से, बजी दादा से, मनोहरी दादा से,
1: ये सब लोग जी। ये तो ऐसा था ना, ये आप सोचिए कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शायद 7 या 8 घंटे या 6 घंटे वाइफ के साथ पास रहता था घर में, बाकी तो सब इनके साथ ही रहता था
0: जी।
1: तो केरसी जी, बूपी जी, मरोरी जी, और उसके बाद भज्जी, ये सब लोग तो मतलब आप सोचो 16-16 घंटे हम साथ में थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वक्त इन लोगों के साथ भी
1: ज्यादा गुजरी, जो लाइफ है वो इनके साथ ही गुजरी है।
0: तो आपके सबसे पक्के दोस्तों में से कौन थे? इनमें
1: पक्के दोस्तों में भज्जी था।
0: अच्छा,
1: भज्जी एक वकील अच्छे म्यूजिशियन थे।
0: हाँ,
1: वो भी गुजर गया अभी। भज्जी, वकील, भूपी जी,
0: भूपिंदर सिंह जी, जो बहुत बड़े गायक भी थे और गिटारिस्ट थे,
1: और केरसी जी
0: जी,
1: ये हम लोग काफी अच्छा ग्रुप था, रात को साथ में बैठना
0: जी,
1: और मैंने सबको छोड़ना क्योंकि मैं नहीं पीता था
0: जी,
1: लेकिन ड्राइवर इनका मैं था, गाड़ी भी मेरी, ड्राइवर भी मैं, और छोड़ना भी इनको।
0: पार्टियां वो लोग करेंगे,
1: पार्टियां वो लोग करेंगे, क्योंकि सब दोस्त थे, लेकिन छोड़ूंगा सबको मैं घर में।
0: इन सब में सबसे बदमाश कौन थे?

0: बदमाश तो सारे थे सारे बदमाश थे
1: जी जी
0: म्यूजिशियन जो है ना
1: जी
0: एक्चुअली बदमाश होता है।
1: अच्छा
0: हाँ क्योंकि
1: आप आपकी भी थी बदमाशियां?
0: हाँ नहीं नहीं हमारी बात हमारी बदमाशी भी क्या म्यूजिक में निकलती थी।
1: अच्छा
0: म्यूजिशियन जो है वो स्मार्ट होता है
1: जी
0: क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो वो बहुत माइन्यूट काम करना पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: एक एक सुर को पकड़ना और सुर में लाना और सुर में बजाना ये एक आत्माई ढांचा है कि जब तक अगर आपके पास आत्मा नहीं है। इलैयाराजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि म्यूजिशियंस आर बॉर्न नॉट मेड।
1: वाह वाह वाह, पैदा होते हैं बनाए नहीं जा सकते। इलैयाराजा का जिक्र निकल गया, मुझे ये पता है कि आपने सिर्फ मुंबई के फिल्म जगत में ही काम नहीं किया बल्कि आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया है।
0: जी मैंने राजा मुझे लेके गए साउथ में अपनी फिल्म के लिए
1: जी
0: और मैंने राजा साहब के कुछ 600 फिल्में का गाना मिक्सिंग मैंने की है।
1: 600 फिल्में तो जीवन भर का काम होता है ये तो।
0: हाँ बट वो तो 35 फिल्में एक साल में करते थे ऐसा प्रोजेक्टर पैदा नहीं होगा।
1: तो आपने बहुत वक्त मद्रास में भी बिताया?
0: मेरा एक पांव मद्रास में एक पांव बॉम्बे में।
1: तो वहां आप बतौर अरेंजर होते थे?
0: जैसे अभी मैंने बताया मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग करता था
1: आई
0: और कभी कभी उनके बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो कंडक्ट करता था, कभी कोई सोलो होता तो सोलो भी बजाता था।
1: वाह।
0: और हम साथ में खाना खाते थे, साथ में चलते थे।
1: लैंग्वेज की प्रॉब्लम?
0: कुछ नहीं, म्यूजिकल लैंग्वेज।
1: क्या बात है। इलैयाराजा की म्यूजिक में बहुत लेयर्स होती हैं, बहुत इंट्रिकेट काम होता है।
0: बहुत।
1: तो कुछ यादें बताइए।
0: मैं आपको बताऊं यहाँ पे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी भी संगीतकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे बड़ा म्यूजिक कोई नहीं है।
1: क्या बात है।
0: इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह है
1: जी,
0: बट ही इज द मैन हु नोज अबाउट म्यूजिक फ्रॉम ए टू जेड।
1: वाह।
0: लिखना खुद, पढ़ना खुद, कंपोज खुद करना, एक एक म्यूजिशियंस को क्या बजवाना है ये ही नोज।
1: वाह।
0: तो ये मोस्ट लर्नेड हमारे यहाँ के जो संगीतकार थे बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका कोई जगह ही नहीं, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, बर्मन साहब, आर डी बर्मन, सी राम चंद्र, शंकर जय किशन, इनको चाहिए एक सहारा लिखने वाला। एक नोटेशन लिखने वाला चाहिए, ए ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जो ऑब्लिगेटो बनाए, जो कॉर्ड डाले
1: जी,
0: वहां पे अरेंजर की जगह है
1: जी।
0: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अरेंजमेंट किए तो मेरी एक जगह थी वहां पे।
1: बिल्कुल।
0: बट इलैयाराजा के वो किसी की जगह नहीं है।
1: इलैयाराजा का खुद करेंगे
0: सारा काम, खुद करते। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा म्यूजिक्टर है।
1: क्या बात है।
0: जैसे मैं आज अगर मैं करता हूं, जब मैं अपना काम करता हूं मेरा सारा काम खुद का है, मैं लिखता भी खुद हूं, जब सोलो पीस होते बजा भी कुछ, लेकिन स्टिल व्हाट राजा सब जो लिखते हैं वो एक आम आदमी नहीं लिख सकता, एक जानकार भी नहीं लिख सकता और आम आदमी भी नहीं लिख सकता।
1: सदमा का गाना मुझे याद आ रहा है।
0: हाँ सुरेश वाड़कर
1: जी। आपने बजाया?
0: मैंने बजाया।
1: ऐ जिंदगी गले लगा दी।

0: इलिया राजा की बातें हुई, मुझे एक चीज याद आई, नैयर साहब।
1: ओहो,
0: उनसे जुड़ी भी यादें हैं, एकदम हम बीच में स्किप कर गए। बल्कि मुझे तो ये भी याद आता है कि जब उनकी वापसी का दौर था तब भी क्या कुछ काम किया आपने, निश्चय वगैरह जो फिल्में आई थी?
1: तब मुझे बुलाया था
0: जी,
1: मेरी वही प्रॉब्लम थी, मैं नहीं,
0: आपने मना कर दिया?
1: ना, नहीं कर पाया आपके साथ। मैं कहा नैयर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड संगीतकार इन द इंडस्ट्री
0: जी,
1: स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस, स्पेशली फॉर सिंगर्स ऑफ दोज डेज, रफी साहब। और क्योंकि हमको जो 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते थे
0: जी,
1: वो सेट पे पैसे दिलाने वाले नैयर साहब।
0: अच्छा, फॉरन ये काम किया, ये पैसे
1: नहीं, उनका ये था कि भी ये प्रोड्यूसर को बोला कि कल रिकॉर्डिंग है तो इतने पैसे ले आना, ये मैंने किस्सा सुना हुआ है
0: जी जी,
1: ये पैसे ले आना। तो प्रोड्यूसर बोलता है इतने पैसे क्या जरूरत है, वो तो पैसे 3 महीने के बाद दें। अच्छा, कब दोगे? 3 महीने, तो 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे।
0: जी,
1: तो नैयर साहब इज द म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिशियंस को सेट पे पैसा दिलाना और 500 से 5,000 रुपए करना सिंगर का, ये नैयर साहब।
0: वाह,
1: रफी साहब 500 रुपए लेते हैं, 5,000 रुपए दिलवाया उनको और म्यूजिशियंस का पूरा। और किसी ने अगर

0: अच्छा बजा। मनोरी जी तो हमेशा उनसे किसी ने ऐसा सोलो बजा दिया तो जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई जेब में 500 रुपये डाल दिए या 100 रुपये डाल दिए, जो भी डाल दिया।
1: जो अच्छा बजाया उसका इनाम।
0: तो ये नैयर साहब थे।
1: वाह। अब बाद में नैयर साहब की शैली में तुषार भाटिया ने अंदाज अपना अपना में म्यूजिक दिया था,
0: हाँ वो मैंने किए। हाँ
1: वो आपने किया है, उसके बारे में बताइए।
0: वही पर मैंने दो या तीन गाने किए, उसके ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मेरा
1: जी
0: टाइम नहीं था मेरे पास। और बहुत पूरा कॉपी म्यूजिक, पूरा
1: नैयर
0: नैयर
1: साहब की
0: साहब का,
1: शैली।
0: पूरी नैयर साहब को लेके। और क्या होता है ना, देखिए नैयर साहब नैयर साहब है,
1: बिल्कुल
0: आप उनको कितना भी कॉपी कर लो नैयर साहब है, आप
1: हाँ
0: कॉपी हो।
1: बिल्कुल
0: आप आज अगर आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो तो यू आर ए कॉपी, यू आर नॉट ओरिजिनल। डू समथिंग ओरिजिनल।
1: बहुत सही बात कर रहे हैं।
0: आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, सलमान खान आमिर खान की फिल्म कर रहा है।
1: जी
0: अच्छा कुछ डिफरेंट म्यूजिक दिया होता तो आज शायद कुछ अलग होता।
1: हम सब ये बात करते हैं कि नैयर की शैली के गाने।
0: हाँ तो बात वही आ गई ना,
1: जी
0: हार्डली चले वो गाने, ज्यादा नहीं चल रहे, क्योंकि जब ओरिजिनल सुनना तो फिर नए सबको ओरिजिनल सुनते हैं ना।
1: हाँ, गीतकारों से किस तरह के रिश्ते रहे जब आप म्यूजिशियन थे तब?
0: हाँ मैंने सबके साथ एज ए अरेंजर, साहिर साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और उस टाइम के जो योगेश और इंदीवर जी, सबके साथ काम किया हुआ।
1: जी
0: रिश्ते भी अच्छे थे, नमस्ते नमस्ते थी।
1: बख्शी
0: लेकिन
1: साहब।
0: बख्शी साहब के साथ मैंने एज ए म्यूजिशियन काम नहीं किया, मुझे बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे।
1: मुझे पता है ये बात, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र आगे दिल तो पागल है के टाइम करेंगे।
0: मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो बख्शी साहब। एक तो वो पान खाते रहना,
1: और पीक दान।
0: वो पीक दान रखना और उसमें थूकते रहना, लेकिन दिल तो पागल आई।
1: हाँ
0: अभी हम गाने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दिल तो पागल कर रहा हूं। मैं तो अपना टेलीफिल्म कर रहा था, यशराज फिल्म्स की
1: हाँ ये बताया गया था कि ये एक टेलीफिल्म है
0: टेलीफिल्म।
1: और कतई नहीं बताया गया कि स्टार कास्ट क्या है।
0: नहीं वो टेलीफिल्म ही थी,
1: ओके
0: गानों ने कन्वर्ट कर दिया दिल तो पागल है। उन्होंने जब गाने सुने तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने तो फिल्म के लग रहे हैं। आदि ने सुना, भाभी जी ने सुना, मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, संजीव कोहली
1: मदन जी के
0: मदन
1: बड़े
0: साहब के
1: बेटे।
0: लड़के,
1: जी
0: वही तो लेके गए मुझे।
1: अच्छा,
0: ये बहुत बड़ा जिक्र है,
1: इसको
0: इसको
1: इसको
0: होल्ड रखते हैं।
1: इसको होल्ड रखते हैं,
0: हाँ
1: यहां सिर्फ एक झलक हमने सुना दी है।
0: हाँ
1: आपके जो म्यूजिक की यात्रा की बातें हो रही थी और उसमें हमने बहुत अलग अलग तमाम संगीतकारों को याद किया, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत भागदौड़ थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा कितने गाने आप करते थे?
0: देखिए जी, एज ए म्यूजिशियन जो है ना, वो समझिए सुबह मदन साहब का बजाया, दोपहर को नौशाद साहब का बजाया, दो गाने हो
1: वाह, दो लेजेंड लोगों के साथ काम हो गया आधे
0: गए
1: दिन में।
0: एक दिन में।
1: अभी तो एक शिफ्ट बची है।
0: नहीं एक दो शिफ्टों में,
1: जी
0: सुबह एक शिफ्ट जो है वो मदन साहब के लिए,
1: अच्छा, सुबह की
0: और
1: पूरी।
0: दोपहर को 3 से 7 या 3 से 8 या 3 से 9 दूसरे प्रोजेक्टर के लिए।
1: जी,
0: ये हमारा उस टाइम पे लॉ था, यू कैन नॉट प्ले मोर देन दैट,
1: दो से ज्यादा नहीं।
0: दो से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ में जिंगल चलते थे,
1: जी
0: एड फिल्म के गाने चलते थे, तो वो सुबह हम 7 बजे करते थे, और उसके बाद में रात को 9 बजे बैकग्राउंड खत्म किया, 9 बजे के बाद फिर जिंगल किया, तो रात को 12 12 एक एक बजे काम करते थे।
1: और जिंगल में
0: लेकिन
1: भी इतना सारा म्यूजिक होता था।
0: जिंगल में ज्यादा नहीं, 7 8 म्यूजिशियन, 10 म्यूजिशियन बहुत हो गए। लेकिन एज ए अरेंजर मैंने दिन में 7 7 गाने किए हुए।
1: बाप रे बाप, सब अलग अलग लोगों के लिए।
0: हाँ मतलब समझिए, एक किसी का, जैसे आप आज कोई भी एल्बम उठा लो, चाहे वो पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत हो, भूपेंद्र हो, सबके जो पहले फर्स्ट एल्बम है ना वो मैंने किया हुआ है।
1: अरे बाप रे, तो द लेटेस्ट भी आपने किया जगजीत
0: ये
1: का?
0: जगजीत की जो फिल्में के जो हिट गाने हैं वो सारे मेरे किए हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: उसके पहले ओपनिंग के जो गाने हैं वो सब मेरे किए हुए हैं। तलत के, आपके गुलाम अली का एक एल्बम आया था मिराज़ गज़ल, वो मेरी
1: अब
0: की हुई है सारी।
1: आशा भोसले और गुलाम अली।
0: हाँ वो सारी मेरी की हुई है।
1: अरे क्या बात है, तो
0: जी
1: मेराज गजल में से एक गजल सुनी जाए फिर।
0: जरूर जरूर सुनिए, उसमें वायलिन सोलो बहुत है,
1: क्या बात है, वाह वाह वाह।
0: आप सुन लीजिए उसको।
1: म्यूजिक अरेंजमेंट की बात बहुत हो रही है और आप बता रहे हैं कि आपने कई बार एक एक दिन में सात सात गाने अरेंज किए। हमारे श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि ये म्यूजिक अरेंजमेंट क्या चीज होती
0: क्या
1: है
0: होता है? यस
1: ना, तो
0: यस
1: ये आप बताएं कि असल में गाना बनता किस तरह से है और उसमें म्यूजिक अरेंजर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से कितना

0: अलग है
1: देखिए जी, यहाँ पे कंडक्टर का चांस तो मुझे सभी चाचा ने दिया,
0: जी।
1: लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट का चांस जो है वो मुझे दिया शंकर शंभू,
0: शंकर शंभू कपाल सर,
1: जो कवाल थे। मुझे मैसेज आया कि आओ बुलाया है, तो मैं गया मिलने के लिए। मैं जी बोला, हम एक पंजाबी फिल्म कर रहे हैं और बेटा तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा जी मैंने तो कभी अरेंजमेंट किया ही नहीं। बोले नहीं करो, दे आर दी पर्सन हु मेड मी अरेंजर।
0: गजब। ये किस साल की बात होगी?
1: सिक्सटीज की होगी,
0: जी
1: हाँ सिक्सटीज, 65 मोस्टली, मोस्टली
0: जी
1: 65,
0: जी
1: क्योंकि 65 से मैंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था। तो पहला उनका, उसके बाद में मैं, जैसे ही मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया तो जितने भी छोटे म्यूजिक थे, जैसे इकबाल कुरैशी, छोटा इकबाल, बीएन बाली, ऐसे काफी लोग, छोटे छोटे म्यूजिक थे, सब ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया।
0: अरेंजर के तौर
1: हाँ,
0: पर।
1: और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मुझे मिलते थे 30 रुपए में दो गानों का अरेंजमेंट करना, 30 रुपए में
0: जी
1: दो गानों का अरेंजमेंट करना, तो दो गाने सुबह दो गाने शाम, तो दिन के 60 रुपए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बिजी हो गया तो जो म्यूजिशियन आए बजाने के लिए वो 100 रुपए दो गाने का लें, कोई 80 ले, कोई 100 ले, कोई 70 ले, कोई 75 ले, और मुझे मिले 30 रुपए।
0: अरे अरे
1: तो एक दिन मैं एक संगीतकार के यहाँ पहुंच गया सुबह 7 बजे, 7 बजे नॉक किया मैंने, अरे उत्तम तुम कहाँ से आ गए सुबह सुबह। जी आ गए, अच्छा आ जाओ चाय पियोगे। मैं आज पी लेंगे। मैंने कहा सर आपसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो। मैंने कहा आप मुझे 30 रुपये दो गानों के देते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कंडक्टिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो कोई 100 रुपया ले जाता है, कोई 70 रुपया ले जाता है, कोई ऐसे, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। वो कल कभी नहीं आई, उन्होंने मुझे निकाल ही दिया, पैसे मांग लिए, जाओ आउट। अब बताओ, आपको जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की।
0: जी
1: फिर उसके बाद जो मिलता रहा मैं करता रहा, फिर मेरा नाम धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर अपने आप ही लोगों ने मेरे पैसे
0: बढ़ाने शुरू किए।
1: बढ़ाने शुरू किए।
0: और म्यूजिक अरेंजमेंट में बहुत सारे काम
1: तो
0: शामिल
1: म्यूजिक
0: हैं
1: अरेंजमेंट में मैंने जितना जिंदगी भर काम किया,
0: जी।
1: मैंने ये काम किया कि एक तो आपने मुझे गाना दे दिया,
0: हाँ
1: ठीक है, आपने एक मेलोडी दे दी मुझे, अब उस मेलोडी के हार्मोनी, उस मेलोडी के बीच के म्यूजिक, चाहे वो ओपनिंग म्यूजिक हो, बीच का म्यूजिक हो, वो सारा मैंने बनाया।
0: जी
1: अब पूरे म्यूजिशंस को रिहर्सल कराई, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई, क्योंकि साउंड मेरा अपना बैलेंस नहीं होता, तो आई आई नेवर यूज टू ट्रस्ट एनीबॉडी, मैं मेरा बैलेंस मैं करूंगा।
0: अच्छा, तो पैनल पर भी आप ही बैठेंगे
1: हाँ, मेरे साथ रिकॉर्डिंग के साथ मैं बैठता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए।
0: जी।
1: तो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना, वो वन मैन शो किया। म्यूजिक का काम था गाना दे दो,
0: मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने केवल ट्यून बनाई।
1: ट्यून बनाई, और उसमें भी बहुत सारी चीज मैंने करेक्शन की है,
0: अच्छा।
1: क्योंकि कई ऐसे म्यूजिक आते थे जिनको ताल का ही पता नहीं होता था, वो लेके आ जाते थे ये सब ऐसा गाना है, उसको ताल में ठीक करना, उसको ठीक करना, आर्टिस्टों को सिखाना, आशा जी होती थी, लता जी होती थी, मुझे ही पूछती थी कि गाना उत्तम इसको कैसे करना है, इसको या क्या जो भी करना है। तो मेरा वन मैन शो रहा है,
0: गजब,
1: टिल हम आपके हैं कौन,
0: क्या बात है।
1: हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जो है
0: ये भी
1: ये।
0: बताना जरूरी कि ये फिल्में वो हैं जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण थे लेकिन अरेंजर आप थे।
1: अरेंजर मैं था, बैकग्राउंड म्यूजिक सारा मेरा है, म्यूजिक सारा मेरा है, अरेंजमेंट पूरा मेरा है, सब कुछ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरी है पूरी, मेरे बिना कुछ वहां हिलता नहीं था।
0: जी
1: तो इसलिए मैंने ऐसे अरेंजर जो काम किया है वो राइट फ्रॉम टिल रिलीज मैंने काम किया है। तो ये एज ए अरेंजर जो मेरी जो पोस्ट रही वो मैंने आपको बताई है।
0: जी जी
1: बाकी कई पुराने संगीतकारों में बहुत खास बात ये थी कि वो म्यूजिक अपना खुद बनाते थे,
0: फर्स्ट म्यूजिक सेकंड
1: मदन साहब
0: म्यूजिक
1: म्यूजिक खुद, मेलोडी खुद बना देते थे,
0: जी
1: नौशाद साहब हो गए, शंकर किशन, ये सब लोग अपना म्यूजिक बना देते थे, तो अरेंजर खाली लिखता था, अरेंजर
0: अच्छा।
1: लिखता था, उसको थोड़ा सजाना बजाना, कॉर्ड डालना, वायलिन बजाएगा, चेलो बजाएगा या क्या बजाएगा, वो सब करते थे। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने वन मैन शो शुरू किया।
0: तो आप तय करते थे कि यहां इतने वायलिन होंगे,
1: हाँ,
0: मैंडोलिन आएगा कि गिटार आएगा
1: क्योंकि
0: कि
1: म्यूजिक
0: या
1: सारा मेरा होता था ना,
0: जी,
1: तो
0: और
1: मैंने
0: वो
1: अभी,
0: पीसेस भी कैसे बजाए जाएंगे,
1: हाँ,
0: उनका

0: चलन क्या होगा वो
1: जैसे
0: सब
1: अभी
0: आप तय
1: मदन
0: कर
1: साहब
0: देना।
1: क्या धा रा रा री री तिरी री वो बजा दिया,
0: जी
1: और वो पीस में रहा है, मैंने उसको कंपोज किया, बच गया गलती से, मैंने कंपोज नहीं किया गलती
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो ऐसे जितने भी म्यूजिक हैं कंपोज पीसीज हैं, मैंने प्यार का उठा लीजिए आप, हम आपके मन उठा लीजिए, मेरे अपने म्यूजिक उठा लीजिए, दिल तो पागल से, या आप पेंटर बाबू चले जाइए
0: जी
1: जब
0: जी
1: उत्तम जगदीश थे, तो
0: जी जी
1: सारे म्यूजिक जो है हर चीज इंटरलूड वगैरह सब मेरा बना हुआ है।
0: अब जैसे हम मैंने प्यार किया की बात करते हैं, अब दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उससे पहले का जो म्यूजिक है, जो फ्लूट
1: जी
0: जिस तरह से चलती है, और
1: जी
0: वो तो वो सारा आपका तैयार किया।
1: सारा मेरा बनाया हुआ है,
0: जी
1: और उस टाइम पे वो जो पीस आया था तारा तत्ता तारा तत्ता, इससे पहले ये फ्लूट कभी नहीं बजी थी इस टाइम
0: हाँ
1: पे,
0: वही बात है,
1: तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि अरे फ्लूट ऐसे भी बज सकती है,
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: बहुत लोगों ने यूज किया वो
0: वो
1: इस
0: एक
1: टाइम
0: आलाप की तरह है प्रॉपरली जो आता है।
1: बिल्कुल।

0: जहाँ
1: या वो कबूतर जा जा में जो पूरा रिदम है।
0: हाँ
1: मेरे रंग में रंगने वाली के पहले का जो ग्रैंडियोर है
0: हाँ।
1: वो बहुत कमाल है।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

जश्न भारती की 70वीं सालगिरह 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

सभी सुनने वालों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। प्यार सच्चा है गर तो महकेगा चंदन की तरह, वरना सारी रात तुम्हारी आंखों में गुजर जाएगी। वो लम्हात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ कह न सके हम, तकदीर के हाथों लुटते रहे, अश्क आंखों से ही बस बहते रहे, हम बुनते रहे ख्वाबों को अक्सर, और एक सिरे पे तन्हा रहे हम, वो दूजा सिरा ढूंढ न पाए हम।

रास्ता, तकदीर में जो होगा वो मिलेगा ही तुझे एक दिन, मगर हम जान की बाजी लगा बैठे, तमन्ना उसे पाने की, उसे अपना बनाने की जो कसम खा बैठे।

ख्यालों में उसी के हम करवटें बदलते रहे, वो नहीं थे पास मगर उन्हीं को याद करते रहे। चाहत भरे दो दिलों की दास्तां चुपके चुपके असर करने लगी, रह रहकर धड़कनों में बस एक ही पुकार

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। वो शाम आई, वो रात आई, तकदीर इतनी बेरहम भी न थी, ये हमने उस रोज जाना। आसमां पे चांद अपने पूरे शबाब पर था, वो मेरे सामने चांदनी बनकर इस तरह आई। उस रात की तन्हाई में दिल मचल उठा और मोहब्बत भरे तराने ओठों पे सज गए।

जब सामने आ ही गए वो, तकदीर मेरी हंसी पड़ी। क्या खूब दीवाने होते हैं, नजरों में मोहब्बत के फूल खिल उठते हैं, सांसें महक उठती हैं, फिजाओं में रंग बिखर गए और आपस में शिकायतें भी तो यही करने लगे।

समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई

0: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल ऐप से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने अब तक 3 रजत और 2 कांस्य पदक समेत 5 पदक जीत लिए हैं। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर लंबी छलांग लगाकर रजत पदक जीता। स्क्वाश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स में और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। डेकाथॉनल में तेजस्विनी शंकर ने और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किए। फ्रीस्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में तजाकिस्तान के नेक्रोज सलीमो को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 4 में जगह बनाकर पदक तय कर लिया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 15 रजत और 16 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। वहीं तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य रखा है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 295 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said that the surgical strike carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on

0: वाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब तक भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के

0: अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दे रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रम्मी कल्चर ऐप और अन्य गेमिंग ऐप से जुड़े मामलों में लगभग 442 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। निदेशालय ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में सावधि जमा, व्यावसायिक दुकानें, एक विला और कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विनी शंकर ने डेकाथोनल में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said that the surgical strike carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi said the world was astonished to see the bravery of Indian soldiers who crossed the line of control to take action against terrorism.
0: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: Touching upon the topic of the ongoing census, Mr. Modi said the first phase is nearing completion across all states and union territories.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने विमेंस लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, विमेंस स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्ष

0: वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की

0: 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
2: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
2: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. Yeah, machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
4: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
5: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
4: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
6: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और UP के इतिहास।
4: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल।

0: हाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नौना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नौना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far, also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200 meter events, and India retained Nona Gaprina Dashavili trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary

0: at the cross-border surgical strike tomorrow.
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी. सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था. बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका

0: बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from more than 32 crore families has already been recorded so far. He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility.
0: Desh ke sabhi rajyon aur kendra shasit pradeshon mein iska pehla charan lagbhag pura ho chuka hai. 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi on the 2nd of October. He cited examples of cleanliness initiatives from across the country.
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं। स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: Prime Minister Modi said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth while announcing health checkups and meditation camps as part of 100-week campaign. Speaking about One District, One Product initiative, Prime Minister Modi said it is creating new opportunities for amla growers and entrepreneurs at Pratapgarh in Uttar Pradesh, with around 100 processing units now operational and women's self-help groups playing an important role. He said the initiative aims to take local products to national and global markets and urge people to promote the vocal for local message during the upcoming festive season. Defence Minister Rajnath Singh has said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. Mr. Singh was addressing a defence conclave in New Delhi today. He said India does not seek to occupy the territory of any country but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy if threatened. He said as long as a neighbouring country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it.
2: भारत शांति चाहता है।
3: इंडिया वांट्स पीस बट इट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सिक्योरिटी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इंडिया बिलीव्स इन डायलॉग बट इफ एनी कंट्री प्रमोट्स टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग विद दैट कंट्री। कंट्रीज दैट यूज टेररिज्म एज अ टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट्स मस्ट बी सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट टेररिज्म कैन नेवर बी अ स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर एनीवन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस।
2: एसेट किसी भी सूरत में नहीं होता।
1: This is Akashwani giving you the news.
4: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
1: Welcome back to the news at 9. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah flagged off the country's first LNG-powered train from Sabarmati Station in Gujarat today, marking railway's shift towards cleaner energy. The train uses a dual-fuel system powered by diesel and liquefied natural gas. The initiative is being seen as a step towards greener rail transport and India's net-zero carbon goals. Mr. Shah also launched a series of railway development projects worth more than 1,500 crore rupees. Addressing the gathering on the occasion, Mr. Shah said, Indian Railways has undergone major transformation over the past 12 years.
5: In 2015-16, the railways used diesel worth 293 crore rupees. By 2024-25, this had come down to 108 crore rupees. Our aim is to bring diesel consumption down to zero by 2030 and save Indian currency. Moreover, 99.6% of the railway network has already been electrified. We will also complete the remaining